0: जी सामिन, गीत ने स्काई ने मैप आपने सुना, कैसा लगा?
1: मुझे तो बहुत पसंद आया। और अब जापानी मुहावरों और कहावतों पर मुश्तमिल मेरा पसंदीदा सिलसिला है जापानी कहावत गरी।
2: इस सिलसिले में हम जापान के जबान जदयाम मुहावरे पेश करते हैं।
0: आज का मुहावरा है कहो ओ नित्ते माते, माफ कीजिएगा, कहो व नित्ते माते।
2: इसका लफ्जी मतलब है नतीजा आने या इनाम मिलने के इंतजार करने के दौरान नींद।
1: चूंकि किस्मत इंसान के बस से बाहर होती है, इसलिए बेहतर है कि जल्दबाजी या जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि सही मौके का सुकून से इंतजार किया जाए।
0: जी, ये है इस मुहावरे का इस्तलाही मानी। और इसमें लफ्ज का हो यानी इनाम या बदला बुद्ध मत का तस्वुर है, जो उस इनाम की तरफ इशारा करता है जो किसी को पिछली जिंदगी के उसके अमाल के नतीजे में मौजूदा जिंदगी में मिलता है। इसका मतलब खुशकिस्मती मिलना भी है।
2: इस जुमले का मतलब यह नहीं है कि लापरवाही या सुस्ती से काम किया जा सकता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी ताकत या वसाइल सर्फ करने के बाद इंसान को पुरसकून और मुस्तहकम जहन के साथ अच्छी खबर का सब्र से इंतजार करना चाहिए।
1: वाकई कामयाबी तो सब्र से इंतजार करने वालों को ही नसीब होती है।
0: हमारे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा।
2: बिल्कुल।
0: समीन, ये कहावत रवायती इरोहा कारुता मुहावरों में से एक है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
0: जी सामिन, आपको याद दिलाते चलें कि अप्रैल में हमने एक सिलसिले में जापान में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए गैर मुल्की जुबानों में मुआवनत की फराहमी के बारे में बताना शुरू किया था। अब कुछ तातुल के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं।
2: किसी शख्स के शदीद अलील या जख्मी होने की सूरत में हंगामी नकल व हमल के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाती है। नई सीरीज में एम्बुलेंसों और हंगामी हालात में उन्हें इस्तेमाल करने के मौजूद तरीके के बारे में बताया जा रहा है।
1: इस सिलसिले की पहली किस्त में 5 अप्रैल को एम्बुलेंस सर्विस पर तवज्जो मरकूज करते हुए बताया गया था कि जापान में जब कभी एम्बुलेंस बुलाने के लिए 119 पर टेलीफोन करें तो टेलीफोन ऑपरेटर जरूरी मालूमात हासिल करता है। ऐसे मौके पर टेलीफोन पर बात करते हुए तर्जुमे के निजी मराकज के जरिए बयख वक्त तर्जुमे की सहूलत भी दस्तियाब हो सकती है।
0: इस सिलसिले की आइंदा किस्त में फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की तयकरदा गाइड फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज के मुताबिक बताएंगे कि एम्बुलेंस को कैसे बुलाया जाए।
1: जापान में एम्बुलेंस बुलाने के लिए आपको 119 डायल करना है।
2: अच्छा, चाहे जापान के किसी भी शहर में हो यही नंबर है?
0: जी जी बिल्कुल, एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन पे बस आपने डायल करना है 119-119। इससे आपका राबता मुकामी फायर डिपार्टमेंट के एम्बुलेंस भिजवाने वाले ऑपरेटर से हो जाएगा।
1: अच्छा, टेलीफोन पर फायर डिपार्टमेंट से राबता होगा?
0: हाँ हाँ, असल में वो भी आपको वजाहत करती हूँ। तो एम्बुलेंस भिजवाने के लिए ऑपरेटर आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछेगा, इसलिए आप एक एक करके इन तमाम सवालात के जवाब दीजिए।
2: आपको कुछ मालूम है किस किस्म के सवालात वो पूछते हैं?
0: सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि क्या ये हंगामी सूरत हाल फायर यानी आतिश जदगी की वजह से है, यानी कि फायर डिपार्टमेंट को किया ना, तो वो ये पूछेगा। तो वो फिर दूसरा पूछेगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी यानी हंगामी नौयत का तिब्बी मसला है, लिहाजा आपने जवाब देना है मेडिकल इमरजेंसी।
1: अच्छा, उसके बाद
0: आपका एड्रेस पूछा जाएगा।
2: और अगर एड्रेस याद ना हो? मुझे तो अपना पता जापान का अब भी याद नहीं है।
0: जेब में रखिएगा लिख। वैसे ऐसी सूरत में किसी नज़दीकी चौराहे या इमारत या काबिले शनाख्त मकाम के बारे में मालूमात मुहैया करें।
1: अच्छा, मुझे याद है कि एक बार मुझे बाहर किसी शख्स के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। चूंकि वो सड़क थी तो ऑपरेटर ने मुझे ये पूछा कि नज़दीकी यूटिलिटी के खम्भे पर लिखा हुआ नंबर बताएं।
0: हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका है और इससे भी लोकेशन आसानी से पता चल सकती है। फिर ऑपरेटर बीमार शख्स का नाम, उसकी उम्र और मर्ज की इलामत जाहिर होने का वक्त पूछेगा। और हाँ, ऑपरेटर आपसे आपका टेलीफोन नंबर भी पूछेगा, इसलिए ऐसा नंबर बताना है जिस पर आप फौरी तौर पर उस वक्त दस्तियाब हों।
1: اچھا یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن اگر کوئی ایسی فوری نوعیت کی ہنگامی صورتحال ہو جس میں ایمبولنس جلد از جلد پہنچنا ضروری ہو اور سوالات جواب دینے میں تاخیر ہونے کا احتمال ہو تو کیا کیا جائے؟
0: ایسی صورت میں تمام سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ایمبولنس بھجوا دی جائے گی، لیکن آپ یہ یاد رکھیں گھبرانا نہیں ہے، ہوش و حواس قائم رکھنے ہیں، تحمل اور سکون کے ساتھ سب باتیں بتانی ہیں۔
2: چلیے سامعین، یہ تھیں جاپان میں ایمبولنس بلانے کے متعلق معلومات۔ مزید معلومات آئندہ ہفتوں میں نشر کی جائیں گی۔ آخر میں ایک بار پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ جاپان میں ایمبولنس کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 119۔
0: اور آج کل تو سامعین گرمی جاپان میں اس قدر زیادہ ہے اور جو کہ عام ہر سال زیادہ بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے عمر رسیدہ لوگ کیا، بچے کیا، اچھا خاصا نوجوان بھی لو لگنے سے بیمار ہو جاتا ہے، اور عام طور پر یہ خدشہ کھلی دھوپ میں یا کھلے مقام میں، آپ کہیں باہر ہوتے ہیں تو وہاں یہ خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کل یوں ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے ایمبولینسز کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔
2: اکثر میں بھی جب بازار میں جاتا ہوں تو ایمبولینسوں کی آوازیں آتی ہیں، اور اکثر میرے خیال میں لوگ لو لگنے کی وجہ سے ہی سفر کرتے ہیں۔
0: جی جی بالکل
1: جی۔ اور
0: اب اجازت لینے کا وقت ہے تو صوفیہ ہمیں کیا بتائیں گی، لیکن جی خلیل صاحب کو پہلے بتانے دیں۔
1: جی جی جی،
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو کے توسط سے ہمارے کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں
0: جو ابھی کوئز شروع ہوا ہے، جاپانی زبان دانی۔
2: جی جی بالکل، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں یہ جواب بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام سننے اور اپنی آرا دینے کے لیے آپ ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس یاد رکھیں nhk.jp/اردو۔
1: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے۔
0: جی سامعین، اب اپنے میزبانوں صوفیہ جمشید، خلیل شیرازی، وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 24 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे वायला खवानो और गुरजिंदर सगु से सुने समाचार। पूर्वी और पश्चिमी जापान के व्यापक क्षेत्रों में सोमवार को तापमान तेजी से बढ़ा और किंकी क्षेत्र के कुछ इलाकों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लोगों को तापघात से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च दाब तंत्र के बने रहने के कारण पारा ऊपर चढ़ गया। कुमामोतो प्रीफेक्चर में पिछले महीने के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। उकी शहर में तापमान 37.7 डिग्री और कुमामोतो शहर में 37.3 डिग्री तक पहुंच गया। शिगा प्रीफेक्चर के ओत्सु शहर में तापमान 39.5 डिग्री और क्योतो शहर में 39.1 डिग्री रहा। अधिकारियों का कहना है कि मध्यवर्ती टोक्यो में दिन का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री दर्ज किया गया। कांतो क्षेत्र से लेकर ओकिनावा तक 31 प्रीफेक्चरों में तापघात चेतावनी जारी की गई है। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, लगातार पानी पीने व नमक का सेवन करने तथा बाहर खुले में गतिविधियों से परहेज करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि नम हवा और उच्च तापमान के कारण उत्तर से पश्चिमी जापान तक के विस्तृत क्षेत्र में वायुमंडलीय परिस्थितियां अस्थिर हो जाएंगी। कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। सोमवार रात से मंगलवार तक तोहोकू के ऊपर से एक वर्षा अग्र के गुजरने से मुख्य रूप से जापान सागर की ओर भारी बारिश की आशंका है। अधिकारियों ने भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में

तूफान के साथ साथ वज्रपात और बवंडरों सहित तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के बंदी शिविरों में मारे गए जापानियों के लिए एक स्मृति सभा में भाग लेने वाले लोगों ने जापान सरकार से आग्रह किया है कि सामूहिक नजरबंदी की पूरी जानकारी प्रदान की जाए। 81 वर्ष पहले 23 अगस्त को तत्कालीन सोवियत संघ ने चीन और अन्य जगहों पर तैनात जापानी सैनिकों और नागरिकों को साइबेरिया तथा अन्य स्थानों पर मौजूद श्रम शिविरों में भेजने के आदेश दिए थे। रविवार को टोक्यो के चिदोरी गाफुची राष्ट्रीय समाधि स्थल में आयोजित एक स्मृति सभा में लगभग 200 लोगों ने मृतकों के लिए मौन प्रार्थना की। इस सभा का आयोजन पूर्व बंदियों और शोक संतप्त परिवारों के एक संगठन ने किया था। जापान के कल्याण मंत्रालय का अनुमान है कि श्रम शिविरों में लगभग 55,000 बंदियों की मौत हुई, लेकिन उनकी सटीक संख्या और उन्होंने जो कठिनाइयां झेली उनके बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया है। 20,264 बंदियों की अस्थियां मिल गई हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण रूस में अस्थियां एकत्र करने का काम रुक गया है। पूर्व बंदी निशिकुरा मासारू के अनुसार जापानी समाज ने साइबेरिया बंदी शिविरों पर अब तक गहराई से विचार नहीं किया है। उन्होंने तथ्यों की पूर्ण जांच पड़ताल करने का आह्वान किया ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापानी शोधकर्ता क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। ये ऐसी प्रणाली है जो सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकती है। देश के इस पहले मॉडल में तथाकथित न्यूट्रल एटम्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मॉडल इस समय मध्यवर्ती जापान के आईची प्रीफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर अणुओं और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों के अनूठे व्यवहार का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की अनेक संभावनाओं का पता लगाते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनके संभावित व्यावसायिक उपयोग पर विचार किया जा रहा है। इस जापानी मॉडल को आणविक विज्ञान संस्थान सहित एक समूह ने विकसित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये लेजर की मदद से निर्वात कक्ष के अंदर उन अणुओं को कैद करता है जो विद्युत आवेशित नहीं होते हैं। माना जाता है कि अन्य क्वांटम कंप्यूटरों के विपरीत ये मॉडल कमरे के तापमान पर काम कर सकता है, यानी इसके लिए प्रशीतन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है और इसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए छोटे आकार में रखा जा सकता है। विकासकर्ताओं का कहना है कि उनका ये मॉडल फिलहाल बुनियादी गणनाएं कर सकता है। अगला कदम इसके संचालन को पर्याप्त रूप से स्थिर बनाना होगा ताकि विशाल गणनाएं की जा सकें। वियतनाम युद्ध की तस्वीरों के लिए मशहूर जापानी फोटो पत्रकार इशिकावा बुनियो का रविवार को नागानो प्रीफेक्चर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। 1965 से 1968 के बीच इशिकावा ने दक्षिणी वियतनाम के साइगोन यानी मौजूदा होचीमिन शहर में एक स्वतंत्र फोटो पत्रकार के रूप में काम किया। बाद में वे उत्तरी वियतनाम भी गए। इशिकावा ने वियतनाम युद्ध की हकीकत बयां करने वाली 15,000 से अधिक तस्वीरें लीं। वे एक फोटोग्राफर के रूप में अमरीकी सैनिकों के साथ भी रहे। इशिकावा जापान के एक अग्रणी युद्ध फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे 1969 से ओकिनावा में भी सक्रिय रहे। इशिकावा ने खादेना वायुसैनिक अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होने वाले B-52 बम वर्षक विमानों और सैनिकों की तस्वीरें खींची थीं। चीन में आयोजित एक प्रतियोगिता में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर दौड़ का इंसान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ शनिवार को पेइचिंग में हुआ। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता की मेजबानी पेइचिंग नगरपालिका सरकार और अन्य संस्थाएं कर रही हैं। जापान जैसे 16 देशों की कंपनियों सहित 666 दलों द्वारा विकसित 2,000 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट

0: इसमें भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में इन रोबोटों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना बढ़ गई है। वे ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाना पीना परोसने जैसे व्यावहारिक कार्यों सहित 51 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। एक रोबोट ने पहले राउंड की 100 मीटर दौड़ पूरी करने में 9.32 सेकंड का समय लिया। ये पिछले साल के रिकॉर्ड 21.50 सेकंड से कहीं कम है। इसने उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चीन सरकार रोबोट उद्योग को विकास के एक नए क्षेत्र के रूप में देखती है, जिसके चलते कई कंपनियां रोबोट विकास की होड़ में शामिल होकर तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रही हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारूजी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: काइतो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओबेंटो दायो।
0: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बोकु गा त्सुकत्ता दा। दोज़ो।
0: मैंने बनाए हैं। लो।
1: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: कीरे।
1: कितना सुंदर है।
0: ताम ने भी प्रशंसा की,
3: सुगोई।
1: वाह।
3: इतादाकिमास।
1: शुक्रिया।
0: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
4: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोजू दा ने।
1: काइतो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
0: तो काइतो ने जवाब दिया,
2: बोकु शेफ नी नारिताई दा।
0: मैं शेफ बनना चाहता हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
4: ई ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: लगता है काइतो बहुत प्रतिभाशाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: कोनो तमागो याकी
0: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
5: तमागोयाकी
0: का मतलब है जापानी ऑमलेट और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।

0: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेटकर मोटा और नरम ऑमलेट तैयार करते हैं।
1: अमाकुते
2: बना है ई विशेषण
1: अमाई
2: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
1: ओइशी
2: का मतलब है स्वादिष्ट।
0: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
1: कुते
0: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।
2: जैसे इस वाक्य में अमाई से बना है
1: अमाकुते
2: और उसके बाद लगा है
1: ओइशी,
2: तो बन गया
1: अमाकुते ओइशी।
0: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: अमाकुते ओइशी देसु। कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देसु।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
3: उएनो कोएन दो देशता का?
4: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देसु।
0: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
3: उएनो कोएन दो देशता का?
2: उएनो पार्क कैसा लगा?
0: यहाँ
1: उएनो कोएन
0: का अर्थ है उएनो पार्क। ये उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है।
1: दो देशता
0: का मतलब है कैसा लगा। ये किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है।
2: महिला ने उत्तर दिया,
4: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देसु।
0: बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था।
1: हिरोकुते
2: बना है ई विशेषण
1: हिरोई
2: से, जिसका अर्थ है बड़ा। विशेषण के इस रूप का उपयोग अगला विशेषण जोड़ने के लिए किया जाता है।
0: उसके बाद आया है शब्द
1: किरेदे,
0: जो ना विशेषण
1: किरेना
0: यानी सुंदर से बना है। ना विशेषण के बाद एक और विशेषण जोड़ने के लिए अंत का ना हटाकर
1: दे
0: लगाते हैं।
2: और
1: तोतेमो योकात्ता देसु
2: का अर्थ है बहुत अच्छा था। तो इसे सुनिए और अभ्यास कर लीजिए।
1: हिरोकुते किरेई दे हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देसु।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बिल्ली की प्यारी सी मूर्ति उपहार में मिली है। आप बोलना चाहते हैं कि वो छोटी और प्यारी है। छोटी को जापानी भाषा में कहेंगे
1: चीसाई
0: और प्यारी को
1: कवाई।
0: वाक्य के अंत में ने लगाकर आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की आशा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।
4: चीसकुते कवाई देसु ने।
2: अब मान लीजिए किसी ने जापान की रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियां समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
1: सेकाकुना,
2: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है
1: बेंडीना।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: सेकाकुदे बेंडी देसु ने।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
5: दोजो।
2: आज के पाठ में
1: दोजो
2: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: दोजो।
2: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
4: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。 カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
6: ハルさんの知恵袋。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश हारू जी की सलाह। आज हम बताएंगे ओहानामी यानी चेरी के फूल निहारने की प्रथा के बारे में।
2: जापान में चेरी के फूल यानी साकुरा लगभग मार्च से मई के महीने तक जापान के दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा में खिलते हैं।
0: लोग ये जानने के लिए मौसम पूर्वानुमान सुनते रहते हैं कि ये फूल कब कहाँ खिल रहे हैं और कितने प्रतिशत खिल चुके हैं। उस जानकारी के आधार पर लोग ओहानामी करने की योजना बनाते हैं।
2: ओहानामी के लिए लोग अपने घर के पास के बाग बगीचों में या सड़क किनारे लगे चेरी के पेड़ देखने तो जाते ही हैं। साथ ही इन फूलों के लिए प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं है।
0: उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से है। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
2: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 24 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे वायला खवानो और गुरजिंदर सग्गू से सुने समाचार। पूर्वी और पश्चिमी जापान के व्यापक क्षेत्रों में सोमवार को तापमान तेजी से बढ़ा और किंकी क्षेत्र के कुछ इलाकों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लोगों को तापघात से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च दाब तंत्र के बने रहने के कारण पारा ऊपर चढ़ गया। कुमामोतो प्रीफेक्चर में पिछले महीने के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। उकी शहर में तापमान 37.7 डिग्री और कुमामोतो शहर में 37.3 डिग्री तक पहुंच गया। शिगा प्रीफेक्चर के ओत्सु शहर में तापमान 39.5 डिग्री और क्योतो शहर में 39.1 डिग्री रहा। अधिकारियों का कहना है कि मध्यवर्ती टोक्यो में दिन का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री दर्ज किया गया। कांतो क्षेत्र से लेकर ओकिनावा तक 31 प्रीफेक्चरों में तापघात चेतावनी जारी की गई है। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, लगातार पानी पीने व नमक का सेवन करने तथा बाहर खुले में गतिविधियों से परहेज करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि नम हवा और उच्च तापमान के कारण उत्तर से पश्चिमी जापान तक के विस्तृत क्षेत्र में वायुमंडलीय परिस्थितियां अस्थिर हो जाएंगी। कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। सोमवार रात से मंगलवार तक तोहोकू के ऊपर से एक वर्षा अग्र के गुजरने से मुख्य रूप से जापान सागर की ओर भारी बारिश की आशंका है। अधिकारियों ने भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के साथ साथ वज्रपात और बवंडरों सहित तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के बंदी शिविरों में मारे गए जापानियों के लिए एक स्मृति सभा में भाग लेने वाले लोगों ने जापान सरकार से आग्रह किया है कि सामूहिक नजरबंदी की पूरी जानकारी प्रदान की जाए। 81 वर्ष पहले 23 अगस्त को तत्कालीन सोवियत संघ ने चीन और अन्य जगहों पर तैनात जापानी सैनिकों और नागरिकों को साइबेरिया तथा अन्य स्थानों पर मौजूद श्रम शिविरों में भेजने के आदेश दिए थे। रविवार को टोक्यो के चिदोरी गाफुची राष्ट्रीय समाधि स्थल में आयोजित एक स्मृति सभा में लगभग 200 लोगों ने मृतकों के लिए मौन प्रार्थना की। इस सभा का आयोजन पूर्व बंदियों और शोक संतप्त परिवारों के एक संगठन ने किया था। जापान के कल्याण मंत्रालय का अनुमान है कि श्रम शिविरों में लगभग 55,000 बंदियों की मौत हुई, लेकिन उनकी सटीक संख्या और उन्होंने जो कठिनाइयां झेली उनके बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया है। 20,264 बंदियों की अस्थियां मिल गई हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण रूस में अस्थियां एकत्र करने का काम रुक गया है। पूर्व बंदी निशी कुरा मासारू के अनुसार जापानी समाज ने साइबेरिया बंदी शिविरों पर अब तक गहराई से विचार नहीं किया है। उन्होंने तथ्यों की पूर्ण जांच पड़ताल करने का आह्वान किया ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापानी शोधकर्ता क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। ये ऐसी प्रणाली है जो सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकती है। देश के इस पहले मॉडल में तथाकथित न्यूट्रल एटम्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मॉडल इस समय मध्यवर्ती जापान के आईची प्रीफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर अणुओं और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों के अनूठे व्यवहार का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की अनेक संभावनाओं का पता लगाते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनके संभावित व्यावसायिक उपयोग पर विचार किया जा रहा है। इस जापानी मॉडल को आणविक विज्ञान संस्थान सहित एक समूह ने विकसित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये लेजर की मदद से निर्वात कक्ष के अंदर उन अणुओं को कैद करता है जो विद्युत आवेशित नहीं होते हैं। माना जाता है कि अन्य क्वांटम कंप्यूटरों के विपरीत ये मॉडल कमरे के तापमान पर काम कर सकता है, यानी इसके लिए प्रशीतन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है और इसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए छोटे आकार में रखा जा सकता है। विकासकर्ताओं का कहना है कि उनका ये मॉडल फिलहाल बुनियादी गणनाएं कर सकता है। अगला कदम इसके संचालन को पर्याप्त रूप से स्थिर बनाना होगा ताकि विशाल गणनाएं की जा सकें। वियतनाम युद्ध की तस्वीरों के लिए मशहूर जापानी फोटो पत्रकार इशिकावा बुनियो का रविवार को नागानो प्रीफेक्चर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। 1965 से 1968 के बीच इशिकावा ने दक्षिणी वियतनाम के साइगोन यानी मौजूदा होचीमिन शहर में एक स्वतंत्र फोटो पत्रकार के रूप में काम किया। बाद में वे उत्तरी वियतनाम भी गए। इशिकावा ने वियतनाम युद्ध की हकीकत बयां करने वाली 15,000 से अधिक तस्वीरें लीं। वे एक फोटोग्राफर के रूप में अमरीकी सैनिकों के साथ भी रहे। इशिकावा जापान के एक अग्रणी युद्ध फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे 1969 से ओकिनावा में भी सक्रिय रहे। इशिकावा ने खादेना वायुसैनिक अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होने वाले B-52 बम वर्षक विमानों और सैनिकों की तस्वीरें खींची थीं। चीन में आयोजित एक प्रतियोगिता में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर दौड़ का इंसान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ शनिवार को पेइचिंग में हुआ। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता की मेजबानी पेइचिंग नगरपालिका सरकार और अन्य संस्थाएं कर रही हैं। जापान जैसे 16 देशों की कंपनियों सहित 666 दलों द्वारा विकसित 2000 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट इसमें भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में इन रोबोटों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना बढ़ गई है। वे ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाना पीना परोसने जैसे व्यावहारिक कार्यों सहित 51 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। एक रोबोट ने पहले राउंड की 100 मीटर दौड़ पूरी करने में 9.32 सेकंड का समय लिया। ये पिछले साल के रिकॉर्ड 21.50 सेकंड से कहीं कम है। इसने उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चीन सरकार रोबोट उद्योग को विकास के एक नए क्षेत्र के रूप में देखती है, जिसके चलते कई कंपनियां रोबोट विकास की होड़ में शामिल होकर तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रही हैं। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारू जी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
3: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
4: काइतो वा, होंतो नी ल्योरी गा जोज़ु दा ने।
2: बुकु, शेफ नी नारीताई न दा।
4: ई ने।
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: काइतो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओ बेंटो दा यो।
0: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
0: मैंने बनाए हैं, लो।
1: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: किरे,
1: कितना सुंदर है।
0: ताम ने भी प्रशंसा की,
3: सुगोई,
1: वाह।
3: इतादाकिमास,
1: शुक्रिया।
0: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
4: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोज़ु दा ने।
1: काइतो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
0: तो काइतो ने जवाब दिया,
2: बुकु शेफ नी नारीताई न दा।
0: मैं शेफ बनना चाहता हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
4: ई ने,
1: ये तो अच्छी बात है।
0: लगता है काइतो बहुत प्रतिभाशाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: कोनो तमागो याकी
0: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
5: तमागोयाकी
0: का मतलब है जापानी ऑमलेट और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।
1: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेटकर मोटा और नर्म ऑमलेट तैयार करते हैं।
5: अमाकुते
0: बना है ई विशेषण
5: अमाई
0: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
5: ओइशी
0: का मतलब है स्वादिष्ट।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
5: कुते
1: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।

0: से इस वाक्य में अमाई से बना है
1: अमाकुते
0: और उसके बाद लगा है
1: ओइशी,
0: तो बन गया
1: अमाकुते ओइशी।
2: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: अमाकुते ओइशी देसु। この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
3: 上野公園どうでしたか？
4: 広くて綺麗でとても良かったです。
2: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
3: उएनो कोएन दो देश्ता का?
0: उएनो पार्क कैसा लगा?
2: यहाँ
1: उएनो कोएन
2: का अर्थ है उएनो पार्क। ये उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है।
1: दो देश्ता
2: का मतलब है कैसा लगा। ये किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
4: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देसु।
2: बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था।
1: हिरोकुते
0: बना है ई विशेषण
1: हिरोई
0: से जिसका अर्थ है बड़ा। विशेषण के इस रूप का उपयोग अगला विशेषण जोड़ने के लिए किया जाता है।
2: उसके बाद आया है शब्द
1: किरेदे
2: जो ना विशेषण
1: किरेना
2: यानी सुंदर से बना है। ना विशेषण के बाद एक और विशेषण जोड़ने के लिए अंत का ना हटाकर
1: दे
2: लगाते हैं
0: और
1: तोतेमो योकत्ता देसु
0: का अर्थ है बहुत अच्छा था। तो इसे सुनिए और अभ्यास कर लीजिए।
1: हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देसु।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बिल्ली की प्यारी सी मूर्ति उपहार में मिली है। आप बोलना चाहते हैं कि वो छोटी और प्यारी है। छोटी को जापानी भाषा में कहेंगे
1: चीसाई
2: और प्यारी को
1: कवाई।
2: वाक्य के अंत में ने लगाकर आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की आशा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।
0: अब मान लीजिए किसी ने जापान की रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियां समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
1: सेकाकुना
0: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है
1: बेंडीना।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
5: दोजो।
0: आज के पाठ में
1: दोजो
0: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: तो सुनिए और दोहराइए।
1: दोजो।
0: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: ओ बेंटो दा यो, बुक गा त्सुकुत्तान दा। दोजो।
6: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देसु।
7: काइतो वा 本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश हारू जी की सलाह। आज हम बताएंगे ओहानामी यानी चेरी के फूल निहारने की प्रथा के बारे में।
0: जापान में चेरी के फूल यानी साकुरा लगभग मार्च से मई के महीने तक जापान के दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा में खिलते हैं।
2: लोग ये जानने के लिए मौसम पूर्वानुमान सुनते रहते हैं कि ये फूल कब कहाँ खिल रहे हैं और कितने प्रतिशत खिल चुके हैं। उस जानकारी के आधार पर लोग ओहाना

0: ओहानामी करने की योजना बनाते हैं।
1: ओहानामी के लिए लोग अपने घर के पास के बाग बगीचों में या सड़क किनारे लगे चेरी के पेड़ देखने तो जाते ही हैं। साथ ही इन फूलों के लिए प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं हैं।
0: उएनो पार्क और शिंजुकू ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से हैं। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
1: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी मुहक्किकीन क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबे या ऐसे निज़ाम में पेशरफ्त कर रहे हैं जो पेचीदा मुश्किलात को हल करने में आम कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा तेज हैं। मुल्क का पहला मॉडल जिसको न्यूट्रल एटम कहा जाता है अब वस्ती जापान के आईची प्रीफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स मुश्किलात को हल करने के मुतअद्दिद इम्कानात तलाश करने के लिए एटम और इलेक्ट्रॉन जैसे जर्रात के मुनफरिद रवैये इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर एक किस्म है जो मुमकिन तजारती इस्तेमाल के लिए जेर गौर है। ये जापान मॉडल इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर साइंस समेत एक ग्रुप ने तैयार किया है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये ऐसे एटमों को मुंसलिक करने के लिए वैक्यूम चैम्बर के अंदर लेजर का इस्तेमाल करता है जो बरकी तौर पर चार्ज नहीं होते हैं। इत्तला के मुताबिक ये मॉडल क्वांटम कंप्यूटर्स की दीगर अकसाम के बरक्स कमरे के दर्जा हरारत पर काम कर सकता है। इसका मतलब है कि इसे कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है और इसे ज्यादा अमली इस्तेमाल के लिए छोटे साइज में रखा जा सकता है। इसे तैयार करने वालों का कहना है कि उनका सिस्टम फिलहाल बुनियादी हिसाब किताब कर सकता है। अगले इकदाम में बड़े पैमाने पर हिसाब व शुमार को फाल करने के लिए इस्तेकाम को यकीनी बनाना शामिल है। वियतनाम जंग की तस्वीर खींचने के लिए मशहूर जापानी फोटो जर्नलिस्ट इशिकावा बुनियो इतवार के रोज नागानो प्रीफेक्चर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 88 वर्ष थी। इशिकावा ने 1965 और 1968 के दरमियान जनूबी वियतनाम के साइगॉन में एक फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया था जो अब होची मिन शहर है। वो बाद में शिमाली वियतनाम चले गए थे। उन्होंने वियतनाम जंग के हकायक तस्वीरी शक्ल में रिकॉर्ड करते हुए 15,000 से ज्यादा तस्वीर खींची, यहाँ तक कि वो एक फोटोग्राफर के तौर पर अमरीकी फौजियों के साथ जुड़ गए। इशिकावा को जापान के मारूफ जंगी फोटोग्राफर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। वो 1969 से ओकिनावा में भी सरगर्म थे। इशिकावा ने फादेना हवाई अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होते B-52 बम्बार तैयारों और उन फौजियों की तस्वीर खींची जिन्हें वियतनाम भेजा जा रहा था। चीन में होने वाले एक मुकाबले में एक इंसान नुमा रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी आलमी इंसान नुमा रोबोट गेम्स हफ्ते के रोज बीजिंग में शुरू हुई। चीनी दार हुकूमत की बल्दियाती हुकूमत और दीगर इदारे इस 5 रोजा मुकाबले की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें जापान जैसे 16 ममालिक की कंपनियों समेत 666 टीमों के 2,000 से ज्यादा इंसान नुमा रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा लेने वाले रोबोट्स की तादाद में पिछले साल से 4 गुना इजाफा हुआ। वो 51 इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं जिनमें ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाने पीने की चीजें पेश करने जैसे अमली काम शामिल हैं। 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई राउंड में एक रोबोट ने 9.32 सेकेंड में दौड़ मुकम्मल की। उसने पिछले साल के 21.50 सेकेंड के जीतने के वक्त को पीछे छोड़ दिया और यहां तक कि यूसेन बोल्ट के कायम करदा 9.58 सेकेंड का इंसानी आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चीनी हुकूमत रोबोट की सनत को तरक्की के एक नए शोबे के तौर पर देखती है। चुनाचा बहुत सी कंपनियां उनकी तैयारी की दौड़ में शामिल हो गई हैं जिसकी वजह से इस शोबे में तकनीकी जिद्दत आई है।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं।

0: तान, मिया और काइटो हारूसा हाउस की रोबोट मालिका मकान हारूसा के साथ ओहानामी यानी चेरी के फूल देखने के लिए एक पार्क में हैं। जापान में मौसम बहार में ओहानामी यानी चेरी की खूबसूरत गुलाबी फूलों से लुत्फानंदोज होने का रिवाज पाया जाता है। लोग फूलों से लदे चेरी के दरख्तों के साथ टहलते हुए या दरख्तों के नीचे बैठकर खाते पीते हुए पिकनिक मनाते हैं।
1: ताम और उसके साथी भी चेरी के एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर बैठ गए हैं। देखें वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आइए सबक नंबर 26 का मकालमा सुनते हैं।
2: ओबेंटो दा यो, बुक गा त्सुकुत्तान दा। दोज़ो।
3: किरे, सुगोई। इतादाकिमास। この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
1: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
0: काइटो खाने का एक डब्बा चादर पर रखकर कहता है,
2: ओबेंटो दा यो।
1: ये है खाने का डब्बा।
2: बुकु गा त्सुकुत्तान दा। दोज़ो।
1: मैंने बनाया है, ये लें।
0: मिया खाने की रंग बिरंगी खूबसूरत अशिया देखकर हैरानी से कहती है,
3: कीरे।
1: बहुत खूबसूरत है।
0: ताम भी खाना देखकर मुतासिर है। वो कहती है,
3: सुगोई।
1: शानदार।
3: इतादाकिमास।
1: खाना शुरू करते हैं।
0: ताम खाना शुरू करती है और पहले जापानी ऑमलेट खाती है।
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और मजेदार है।
0: मिया कहती है,
4: काइटो वा होंतो नी रियोरी गा जोजू दा ने।
1: काइटो, आप वाकई खाना पकाने के माहिर हैं।
0: काइटो जवाब देता है,
2: बुकु शेफ नी नारिताइन दा।
1: मैं बावर्ची बनना चाहता हूँ।
0: मिया सर हिलाकर कहती है,
4: ई ने।
1: ये तो अच्छा है।
0: ताम और मिया काइटो की खाना पकाने की महारत से खासी मुतासिर मालूम होती हैं।
1: मुझे यकीन है कि काइटो पेशावर बावर्ची बनने में कामयाब हो जाएगा। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: ओबेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा। दोज़ो।
3: किरे, सुगोई। इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
4: काइटो वा होंतो नी रियोरी गा जोजू दा ने।
2: बुकु शेफ नी नारिताइन दा।
4: ई ने।
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, ये जापानी ऑमलेट मीठा और मजेदार है।
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए एक से ज़ायद तासीरात का इजहार कर सकते हैं।
1: कोनो तमागो याकी की मायनी है ये जापानी ऑमलेट। तमागो याकी या जापानी तर्ज का आमलेट खाने के डिब्बे, जिसे हम टिफिन भी कह सकते हैं, में तकरीबन लाजमी शामिल होता है। इसे बनाने के लिए अंडों में शक्कर शामिल करके फेंटा जाता है, फिर फ्राई पैन में उसकी पतली तह लगाते हुए रोल किया जाता है। हतमी तौर पर यह ब्लॉक की शक्ल का होता है। अगला लफ्ज़ अमाकते, दरअसल ई इसमें सिफत अमाई यानी मीठा से बना है और ओइशी के मायनी है मज़ेदार। आज का नुक्ता दो या जायद इसमें सिफत को जोड़कर अपने तासुर का इजहार करने से मुतल्लिक है। ई इसमें सिफत को जोड़ने के लिए उसके आखिरी ई को हटाकर कुते लगाना होगा। आज के मकालमे में अमाई और ओइशी मिलते हैं तो अमाई तब्दील होकर अमाकते बनता है और उसके बाद ओइशी लगकर अमाकते ओइशी बनता है।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: अमाकते ओइशी देस। कोनो तमागो याकी अमाकते ओइशी देस।
0: जी सामीन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब एक पार्क से मुतालिक तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
0: उएनो पार्क कैसा था?
1: उएनो कोएन यानी उएनो पार्क, ये टोक्यो में वाकई एक बड़े पार्क का नाम है और दो देशता का यानी कैसा था, ये तासुर पूछने का एक अंदाज है।
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
0: वसी और खूबसूरत और बहुत अच्छा था।
1: हिरोकुते, ई इसमें सिफत हिरोई यानी वसी की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। किरेई दे, ना इसमें सिफत किरेई।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 24 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे वायला खबानो और

और गुरजिंदर सगू से सुने समाचार। पूर्वी और पश्चिमी जापान के व्यापक क्षेत्रों में सोमवार को तापमान तेजी से बढ़ा और किंकी क्षेत्र के कुछ इलाकों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लोगों को तापघात से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च दाब तंत्र के बने रहने के कारण पारा ऊपर चढ़ गया। कुमामोतो प्रीफेक्चर में पिछले महीने के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। उकी शहर में तापमान 37.7 डिग्री और कुमामोतो शहर में 37.3 डिग्री तक पहुंच गया। शिगा प्रीफेक्चर के ओत्सु शहर में तापमान 39.5 डिग्री और क्योतो शहर में 39.1 डिग्री रहा। अधिकारियों का कहना है कि मध्यवर्ती टोक्यो में दिन का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री दर्ज किया गया। कांतो क्षेत्र से लेकर ओकिनावा तक 31 प्रीफेक्चरों में तापघात चेतावनी जारी की गई है। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, लगातार पानी पीने व नमक का सेवन करने तथा बाहर खुले में गतिविधियों से परहेज करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि नम हवा और उच्च तापमान के कारण उत्तर से पश्चिमी जापान तक के विस्तृत क्षेत्र में वायुमंडलीय परिस्थितियां अस्थिर हो जाएंगी। कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। सोमवार रात से मंगलवार तक तोहोकू के ऊपर से एक वर्षा अग्र के गुजरने से मुख्य रूप से जापान सागर की ओर भारी बारिश की आशंका है। अधिकारियों ने भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के साथ साथ वज्रपात और बवंडरों सहित तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के बंदी शिविरों में मारे गए जापानियों के लिए एक स्मृति सभा में भाग लेने वाले लोगों ने जापान सरकार से आग्रह किया है कि सामूहिक नजरबंदी की पूरी जानकारी प्रदान की जाए। 81 वर्ष पहले 23 अगस्त को तत्कालीन सोवियत संघ ने चीन और अन्य जगहों पर तैनात जापानी सैनिकों और नागरिकों को साइबेरिया तथा अन्य स्थानों पर मौजूद श्रम शिविरों में भेजने के आदेश दिए थे। रविवार को टोक्यो के चिदोरी गाफुची राष्ट्रीय समाधि स्थल में आयोजित एक स्मृति सभा में लगभग 200 लोगों ने मृतकों के लिए मौन प्रार्थना की। इस सभा का आयोजन पूर्व बंदियों और शोक संतप्त परिवारों के एक संगठन ने किया था। जापान के कल्याण मंत्रालय का अनुमान है कि श्रम शिविरों में लगभग 55,000 बंदियों की मौत हुई, लेकिन उनकी सटीक संख्या और उन्होंने जो कठिनाइयां झेली उनके बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया है। 20,264 बंदियों की अस्थियां मिल गई हैं, लेकिन उक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण रूस में अस्थियां एकत्र करने का काम रुक गया है। पूर्व बंदी निशिकुरा मासारू के अनुसार जापानी समाज ने साइबेरिया बंदी शिविरों पर अब तक गहराई से विचार नहीं किया है। उन्होंने तथ्यों की पूर्ण जांच पड़ताल करने का आह्वान किया ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापानी शोधकर्ता क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। ये ऐसी प्रणाली है जो सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकती है। देश के इस पहले मॉडल में तथाकथित न्यूट्रल एटम्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मॉडल इस समय मध्यवर्ती जापान के आइची प्रीफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर अणुओं और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों के अनूठे व्यवहार का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की अनेक संभावनाओं का पता लगाते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनके संभावित व्यावसायिक उपयोग पर विचार किया जा रहा है। इस जापानी मॉडल को आणविक विज्ञान संस्थान सहित एक समूह ने विकसित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये लेजर की मदद से निर्वात कक्ष के अंदर उन अणुओं को कैद करता है जो विद्युत आवेशित नहीं होते हैं। माना जाता है कि अन्य क्वांटम कंप्यूटरों के विपरीत ये मॉडल कमरे के तापमान पर काम कर सकता है, यानी इसके लिए प्रशीतन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है और इसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए छोटे आकार में रखा जा सकता है। विकासकर्ताओं का कहना है कि उनका ये मॉडल फिलहाल बुनियादी गणनाएं कर सकता है। अगला कदम इसके संचालन को पर्याप्त रूप से स्थिर बनाना होगा ताकि विशाल गणनाएं की जा सकें। वियतनाम युद्ध की तस्वीरों के लिए मशहूर जापानी फोटो पत्रकार इशिकावा बुनियो का रविवार को नागानो प्रीफेक्चर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। 1965 से 1968 के बीच इशिकावा ने दक्षिणी वियतनाम के साइगोन यानी मौजूदा होचीमिन शहर में एक स्वतंत्र फोटो पत्रकार के रूप में काम किया। बाद में वे उत्तरी वियतनाम भी गए। इशिकावा ने वियतनाम युद्ध की हकीकत बयां करने वाली 15,000 से अधिक तस्वीरें लीं। वे एक फोटोग्राफर के रूप में अमरीकी सैनिकों के साथ भी रहे। इशिकावा जापान के एक अग्रणी युद्ध फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे 1969 से ओकिनावा में भी सक्रिय रहे। इशिकावा ने खादेना वायुसैनिक अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होने वाले B-52 बम वर्षक विमानों और सैनिकों की तस्वीरें खींची थीं। चीन में आयोजित एक प्रतियोगिता में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर दौड़ का इंसान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ शनिवार को पेइचिंग में हुआ। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता की मेजबानी पेइचिंग नगरपालिका सरकार और अन्य संस्थाएं कर रही हैं। जापान जैसे 16 देशों की कंपनियों सहित 666 दलों द्वारा विकसित 2000 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट इसमें भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में इन रोबोटों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना बढ़ गई है। वे ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाना पीना परोसने जैसे व्यावहारिक कार्यों सहित 51 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। एक रोबोट ने पहले राउंड की 100 मीटर दौड़ पूरी करने में 9.32 सेकंड का समय लिया। ये पिछले साल के रिकॉर्ड 21.50 सेकंड से कहीं कम है। इसने उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चीन सरकार रोबोट उद्योग को विकास के एक नए क्षेत्र के रूप में देखती है, जिसके चलते कई कंपनियां रोबोट विकास की होड़ में शामिल होकर तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रही हैं। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारूजी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: ओबेंटो दा यो, बुक गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
3: किरे, सुगोई, इतादाकिमास।

0: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕シェフになりたいんだ。
1: いいね。
3: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
4: काइटो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओबेंटो दायो।
3: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बोकु गा त्सुकुत्तान दा। दोज़ो।
3: मैंने बनाए हैं। लो।
4: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
0: किरे।
4: कितना सुंदर है।
3: ताम ने भी प्रशंसा की,
0: सुगोई।
4: वाह।
0: いただきます।
4: शुक्रिया।
3: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
0: この卵焼き甘くて美味しいです。
4: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
3: उसके बाद मिया ने कहा,
1: काइटो は本当に料理が上手だね。
4: काइटो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
3: तो काइटो ने जवाब दिया,
2: बोकु शेफ になりたい んだ।
3: मैं शेफ बनना चाहता हूँ।
4: ये सुनकर मिया ने कहा,
1: ईने।
4: ये तो अच्छी बात है।
3: लगता है काइटो बहुत प्रतिभाशाली है।
4: आज का मुख्य वाक्य है,
0: この卵焼き甘くて美味しいです。
4: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
3: इस वाक्य में
5: この卵焼き
3: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
5: तमागो याकी
3: का मतलब है जापानी ऑमलेट, और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।
4: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं, और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेटकर मोटा और नर्म ऑमलेट तैयार करते हैं।
5: अमाकुते
3: बना है ई विशेषण
5: अमाई
3: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
5: ओइशी
3: का मतलब है स्वादिष्ट।
4: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो, तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
5: कुते
4: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।
3: जैसे इस वाक्य में अमाई से बना है
5: अमाकुते,
3: और उसके बाद लगा है
5: ओइशी,
3: तो बन गया
5: अमाकुते ओइशी।
4: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: अमाकुते ओइशी देस। कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
3: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
4: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
6: उएनो कोएन दो देशता का?
3: उएनो पार्क कैसा लगा?
4: यहाँ
5: उएनो कोएन
4: का अर्थ है उएनो पार्क। ये उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है।
5: दो देशता
4: का मतलब है कैसा लगा। ये किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है।
3: महिला ने उत्तर दिया,
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
4: बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था।
5: हिरोकुते
3: बना है ई विशेषण
5: हिरोई
3: से, जिसका अर्थ है बड़ा। विशेषण के इस रूप का उपयोग अगला विशेषण जोड़ने के लिए किया जाता है।
4: उसके बाद आया है शब्द
5: किरेई दे,
4: जो ना विशेषण
5: किरेना
4: यानी सुंदर से बना है। ना विशेषण के बाद एक और विशेषण जोड़ने के लिए अंत का ना हटाकर
5: दे
4: लगाते हैं।
3: और
5: तोतेमो योकत्ता देस
3: का अर्थ है बहुत अच्छा था। तो इसे सुनिए और अभ्यास कर लीजिए।
5: हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
4: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बिल्ली

0: की प्यारी सी मूर्ति उपहार में मिली है। आप बोलना चाहते हैं कि वो छोटी और प्यारी है। छोटी को जापानी भाषा में कहेंगे
1: चीसाई
0: और प्यारी को
1: कवाई।
0: वाक्य के अंत में ने लगाकर आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की आशा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।
2: चीसकते कवाई देसने।
3: अब मान लीजिए किसी ने जापान की रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियां समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
1: सेकाकुना
3: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है
1: बेंडीना।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: सेकाकुで便利ですね।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
5: दोजो।
3: आज के पाठ में
1: दोजो
3: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: दोजो।
3: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
2: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश, हारू जी की सलाह। आज हम बताएंगे ओहानामी यानी चेरी के फूल निहारने की प्रथा के बारे में।
3: जापान में चेरी के फूल यानी साकुरा लगभग मार्च से मई के महीने तक जापान के दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा में खिलते हैं।
0: लोग ये जानने के लिए मौसम पूर्वानुमान सुनते रहते हैं कि ये फूल कब कहाँ खिल रहे हैं और कितने प्रतिशत खिल चुके हैं। उस जानकारी के आधार पर लोग ओहानामी करने की योजना बनाते हैं।
3: ओहानामी के लिए लोग अपने घर के पास के बाग बगीचों में या सड़क किनारे लगे चेरी के पेड़ देखने तो जाते ही हैं। साथ ही इन फूलों के लिए प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं है।
0: उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से है। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
3: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त रात 9 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे की खबरें हैं। मशरकी और मगरबी जापान के वसी इलाकों में पीर के रोज दर्ज हरारत में इजाफा हो गया। खिंकी इलाके की बाज जगहों पर दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया। लोगों को ताकीद की गई है कि लू लगने से बचने के लिए मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जापान के महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में बुलंद दबाव का निज़ाम छा गया, जिसकी वजह से दर्ज हरारत बढ़ गया। कुमामोतो प्रीफेक्चर में गुज़िश्ता माह आने वाले ताकतवर जलजले से मुतासर इलाके में भी शदीद गर्मी पड़ी। ऊकी शहर में दर्ज हरारत 37.7 डिग्री और कुमामोतो शहर में 37.3 डिग्री तक पहुंच गया। शीगा प्रीफेक्चर के ओसू शहर में दर्ज हरारत 39.5 डिग्री और क्योटो शहर में 39.1 डिग्री पर पहुंच गया। हुकाम का कहना है कि वस्ती टोक्यो में दिन का बुलंद दर्ज हरारत 33.5 डिग्री पर पहुंचा। खांतो इलाके से ओकिनावा प्रीफेक्चर तक 31 प्रीफेक्चरों में लू लगने से बचाव के लिए इंतबाह लागू है। लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो एयर कंडीशनर इस्तेमाल करें, कसरत से पानी पिएं, नमक की कमी दूर करने के लिए नमक लें और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज करें। महकमा मौसमियात के हुकाम का ये भी कहना है कि हवा में नमी और बुलंद दर्जे हरारत की वजह से शुमाली से मगरबी जापान तक के वसी इलाकों में कुर्रे हवाई की सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो जाएगी। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ मकामी तौर पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। गर्म और मरतूब हवा का एक खत तोहोकु इलाके से गुजरेगा, जो मुमकिन तौर पर पीर की रात से मंगल तक बहरे जापान की तरफ मूसलाधार बारिश लाएगा। हुकाम जोर दे रहे हैं कि मिट्टी के तोदे गिरने, नशेबी इलाकों में सैलाब और दरियाओं में तुगयानी के साथ साथ आसमानी बिजली गिरने और बगोलों समेत हवा के तेज झकड़ों से चौकन न रहा जाए। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत हिरासती कैंपों में हलाक हो जाने वाले जापानियों की यादगारी तकरीब के शुरका ने हुकूमत जापान पर जोर दिया है कि वो इज्तमाही हिरासत की मुकम्मल मालूमात फराहम करे। साबिक सोवियत यूनियन की जानिब से चीन और दीगर जगहों पर जापानी फौजियों और शहरियों को साइबेरिया और दीगर मकामात पर मुशक्कती कैंपों में भेजे जाने का हुक्म देने को 23 अगस्त के दिन 81 साल मुकम्मल हो गए हैं। टोक्यो के चिदोरीगा फूची कौमी कब्रस्तान में मुनक़िदा एक तकरीब में तकरीबन 200 अफराद ने हलाकशुदगान के लिए एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की। इस तकरीब का अहतमाम साबिक कैदियों और सोगवार खानदानों की एक अंजुमन ने किया था। जापान की वजारत बहबूद के अंदाजे के मुताबिक हिरासत के दौरान तकरीबन 55,000 कैदियों की मौत हुई, लेकिन उनकी सही तादाद और कैदियों की तकालीफ की वसत ताहाल मालूम नहीं है। 20,264 कैदियों की बाकियात बाजियाफ्त की जा चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान रूस में बाकियात जमा करने का काम रोक दिया गया है। साबिक कैदी निशिकुरा मसारू ने कहा कि जापानी माशरे ने अभी तक साइबेरिया की हिरासत पर एक तवील और सख्त नज़र नहीं डाली है। उन्होंने जोर दिया कि हकाइक की मुकम्मल छानबीन और जाँच की जाए ताकि ये अलमिया कभी ना दोहराया जाए।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी मुहक्किकीन क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबे या ऐसे निजाम में पेशरफ्त कर रहे हैं जो पेचीदा मुश्किलात को हल करने में आम कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा तेज हैं। मुल्क का पहला मॉडल जिसको न्यूट्रल एटम कहा जाता है, अब वस्ती जापान के आईची प्रीफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स मुश्किलात को हल करने के मुताद्दिद इम्कान तलाश करने के लिए एटम और इलेक्ट्रॉन जैसे जर्रात के मुनफरिद रवैये इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर एक किस्म है जो मुमकिन तजारती इस्तेमाल के लिए जेर गौर है। ये जापान मॉडल इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक

0: मॉलिक्यूलर साइंस समेत एक ग्रुप ने तैयार किया है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये ऐसे एटमों को मुंसलिक करने के लिए वैक्यूम चैम्बर के अंदर लेजर का इस्तेमाल करता है जो बरकी तौर पर चार्ज नहीं होते हैं। इत्तलात के मुताबिक ये मॉडल क्वांटम कंप्यूटर्स की दीगर अकसाम के बरक्स कमरे के दर्जा हरारत पर काम कर सकता है। इसका मतलब है कि इसे कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है और इसे ज्यादा अमली इस्तेमाल के लिए छोटे साइज में रखा जा सकता है। इसे तैयार करने वालों का कहना है कि उनका सिस्टम फिलहाल बुनियादी हिसाब किताब कर सकता है। अगले इकदाम में बड़े पैमाने पर हिसाब शुमार को फाल करने के लिए इस्तेकाम को यकीनी बनाना शामिल है। वियतनाम जंग की तस्वीर खींचने के लिए मशहूर जापानी फोटो जर्नलिस्ट इशिकावा बुनियो इतवार के रोज नागानो प्रीफेक्चर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 88 वर्ष थी। इशिकावा ने 1965 और 1968 के दरमियान जनूबी वियतनाम के साइगॉन में एक फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया था, जो अब होची मिन शहर है। वो बाद में शिमाली वियतनाम चले गए थे। उन्होंने वियतनाम जंग के हकायक तस्वीरी शक्ल में रिकॉर्ड करते हुए 15,000 से जायद तस्वीर खींची, यहाँ तक कि वो एक फोटोग्राफर के तौर पर अमरीकी फौजियों के साथ जुड़ गए। इशिकावा को जापान के मारूफ जंगी फोटोग्राफर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। वो 1969 से ओकिनावा में भी सरगर्म थे। इशिकावा ने फादेना हवाई अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होते B-52 बम्बार तैयारों और उन फौजियों की तस्वीर खींची जिन्हें वियतनाम भेजा जा रहा था। चीन में होने वाले एक मुकाबले में एक इंसाननुमा रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी आलमी इंसाननुमा रोबोट गेम्स हफ्ते के रोज बीजिंग में शुरू हुई। चीनी दारुकूमत की बल्दियाती हुकूमत और दीगर इदारे इस 5 रोजा मुकाबले की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें जापान जैसे 16 ममालिक की कंपनियों समेत 666 टीमों के 2,000 से ज्यादा इंसाननुमा रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा लेने वाले रोबोट्स की तादाद में पिछले साल से 4 गुना इजाफा हुआ। वो 51 इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाने पीने की चीजें पेश करने जैसे अमली काम शामिल हैं। 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई राउंड में एक रोबोट ने 9.32 सेकेंड में दौड़ मुकम्मल की। उसने पिछले साल के 21.50 सेकेंड के जीतने के वक्त को पीछे छोड़ दिया और यहाँ तक कि यूसेन बोल्ट के कायम करदा 9.58 सेकेंड का इंसानी आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चीनी हुकूमत रोबोट की सनत को तरक्की के एक नए शोबे के तौर पर देखती है। चुनाचा बहुत सी कंपनियां उनकी तैयारी की दौड़ में शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से इस शोबे में तकनीकी जिद्दत आई है।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं।

0: 正確で便利ですね。
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
2: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के लफ्ज मकालमे में कायतों ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है।
3: दोजो
2: आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज़ पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा यह किसी काम की इजाज़त देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
3: दोजो
4: दोजो
3: दोजो।
1: सामईन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
5: दोजो।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपने तासुरात का इजहार करती है।
3: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा। दोजो।
6: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तामागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
7: काइटो वा होंतो नी ल्योरी गा जोजु दा ने।
3: बुकु, शेफु नी नारिताई न दा।
7: ई ने।
1: अब हारूसान की संबील का कॉर्नर। आज का मौजू है ओहानामी, यानी चेरी के फूलों का नजारा।
2: हिरा, आप जापान आकर ओहानामी से तो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुई होंगी।
1: जी यकीनन, मौसम बहार में खूबसूरत गुलाबी फूलों से लदे चेरी के दरख्तों के साथ चहलकदमी करना और उनके नीचे बैठकर खाना पीना बहुत पुरलुत्फ होता है।
2: चेरी के फूल मार्च से मई तक जुनूबी इलाकों से शिमाली इलाकों की जानिब खिलते जाते हैं। मुल्क भर के लोग अपने अपने इलाके के फूल खिलने के मुतवक वक्त से मुतालिक महकमे मौसमियात की पेशगोई और खिलने के मौजूदा मरहले के ऐलानात के मुंतजर रहते हैं, ताकि इसी लिहाज से अपनी अपनी पिकनिक की मनसूबाबंदी कर सकें।
1: तो ज्यादातर लोग ओहानामी के लिए कहाँ जाते हैं?
2: कई लोग अपने अपने इलाके के बागात या सड़कों के किनारों पर लगे चेरी के दरख्तों पर फूलों के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ओहानामी के लिए मशहूर मकाम का रुख करते हैं। टोक्यो में उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन नेशनल पार्क मकबूल मकामात हैं। इनके अलावा दरियाए सुमीदा और दरियाए मेगुरो के किनारे लगे चेरी के दरख्त भी ओहानामी के लिए मकबूल हैं। रात के वक्त बर्फी कुमकुमों से आरास्ता चेरी के दरख्त भी देखने से ताल्लुक रखते हैं।